ऐसी उडारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार फेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारिया दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उडारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर दे अंदर दाखल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जुन साहब

0: को समझायो इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे नी संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा। बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

दुष्ट दमन जी उस बैवान विच बैठे ने, वो बैवान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरे आ, किथे जा पहुंचे आ, गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले, आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने, अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनास्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा पार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़ियां बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, ते कलगीधर पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती पे होया, मुरपित पूर्व

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदे, अपनी गल दे नाल लगा लैंदे अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदे। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकदा कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं भटता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई। अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा कराण जिथे जाना चाहनी हां। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले मांजदे पे सी, अज ये गुण लै जाना बाबा दीप सिंह होने ते कौले मांजन। बाबा ही कौले मांजदे पे, कोला हाथ च नाल सिमरन नाल कोला, नाल सिमरन नाल कोला। इन्नी क लिव लग के कोला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नु 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी दे, जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही ए सवा नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवा दे ते डंडौत करके मालक नूं कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा। कहंदे दीप सिंह कोले मांजदा पे, बाबा जी तुहाडी कृपा नाल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल, ते तन गुरु गोबिंद सिंह

आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हां आखिया जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तों बगैर। अज दूजा दिन होया इने सोचिया भई हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी।

ते राजे ने पूछ कीती, आखण लगा तेरी खड़ाम किथे है। राणी ने आखिया, मेरे पैरां विच है। भई मैं पूछिया, तेरी खड़ाम किथे है? आखण लगी, चात मारू मैं पैरां विच पाई हुई है। राजा देख के बड़ा हैरान होया, मैं ते एक खड़ाम चुक लिया सी, दोनों खड़ामा इहदे पैरां विच। जिथे खड़ाम लको के जाके रखी है, जदों बारी खोल के चात मारी, ओ खड़ाम इथे है ही नहीं। बड़ा हैरान होया। राणी आखण लगी, स्वामी मैनू पता है, मैं जानदी हां कि तुसी मेरा पिछा जरूर करदे होवोगे कि इह किथे जांदी है। हुण तुहानू पता लग गया मैं किथे जांदी हां। मैं संगत विच जांदी हां, मैं जान गई हां तुसी मेरा जोड़ा चुक के लियाए होवोगे। आखण लगा, हां तारा मैं ही तेरी खड़ाम चुक के लियाया हां, पर तू मैनू यह दस, ये ते मैं चुक ले आया सी ते तेरे पैरां विच किवें? प्यार विच भिज के आखण लगी, जदों संगत अरदास करदी है ना ते गुरु रहमत करदा है, स्वामी कीर्तन विच बड़ियां बख्शां ने, कीर्तन विच बड़ियां ही रहमतां ने। खड़ामां ते इक पासे, उथे ते जिंदगियां भी मिलदियां ने। सारी संगत ने मिलके अरदास कीती ते तां मेरी खड़ाम वापस आई। जदों इस तरह तारा राणी ने दसिया ना, ते अज राजे दा भी सिर चुक गया। आखण लगा, मैनू भी लेके जाया कर संगत विच, मैं जानदा ही नहीं सी भी कीर्तन विच एडियां रहमतां ने। सो सतसंगियो, अज ए राजा भी कीर्तन विच जांदा है, हुण ए भी कीर्तन विच बैठ के सवाल सफले करदा है। सो गुरु प्यारियो, कीर्तन विच बड़ियां ही रहमतां ने। जेड़ा कीर्तन विच बैंदा है उनू घाटा नहीं पैंदा। कई वार असी सोच लैंदे हां वे घंटा दो घंटे जे गुरुद्वारे बैठांगे शायद सानू काम विच घाटा पै जाएगा, कदी भी घाटा नहीं पैंदा। जिहड़े सवास असां गुरु दे कीर्तन विच बैठ के गुजारे ने ना, उन्हां सवासां दे बदले ते किन्ने गुणा ज्यादियां रहमतां गुरु देंदा है। बहुत रहमतां मिलदियां ने। 24 घंटियां विच 2.5-3 घंटे सवासां दा दसवंध बणदा है। इह कीर्तन विच बैठ के गुजार दईए ना ते 24 घंटियां दे सवास सफले हो जांदे ने। इह आपां ख्याल रखना है, शुभा शाम संगत विच बैठना है।

तेरी बाणी विच बड़िया रहमता ने। साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। अतारा राणी दे उदाहरण दे के भाई गुरुदास जी सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। कीर्तन विच बैठेगा ना दुनिया दे दुखां कलेशां तों सतगुरु तैनू आप बचा लवेगा।

0: भजो गोविंद भूल मत जाओ।
1: इतने कीर्तन समाप्ति कर दें, कीर्तन करद बाणी पढ़द आप जी आनंद सेवकंद को बेंत भुला हुई होगी आप जी बख्शन योग हो भुला चुका लिखे मां आयो संगत वालों परम पूज सिंह साहब जी वालों बेंत माया शोध पेठ हाजर है पातशाह जी जिन्हें खजाने जमाए सुख जाने भरपूर कर रहे सत खालसा जी काज राश कर रहे हुक्म होया जी पंच मिनट का शब्द मन करते कि कीर्तन

0: तो भला मेरा कर्म जित भेजे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पेरणी दी चुग्गी विच पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जाऊं कुछ आदास विचाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश की थी है ना नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीरनी डाडी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां हन जेड़ा तुरे है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है वो पहुंच कि नहीं सकदा गली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है पर भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मंत्र है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तो पाइए होर हिकमत हुक्म कर्म कर महापुरुषां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जाती है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरुषां दी संगत कीतियां की मिलदा ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस देंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चलिए मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताईं

तन जियो तह को जग में, तन जियो तह को जग में, मुक्त हर चित्त में जुट विचार देह अन्य।

बुद्ध सभी पुत जो उजियारे जाने की बढ़ने मनोहात ले जाने की बढ़ने।

कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पारी। उस सहज अवस्था नु प्राप्त करने वास्ते गुरमुख ने एक मंजिल तय करनी, इस रस्ते ते तुरना है। गुरमुख का अपना एक रस्ता है, उस रस्ते दिया पैड़ा गुरु नानक ने छड़िया ने। तुसा वेखिया कच्चे राहां ते एक बंदा लंघ जाए ना उहदे पैरां दे निशान पैंदे, दूजा वह बंदा जिसने वह पासा कदे ना वेखिया होवे इधर उधर झाकदा है, जिधर पैरां दे निशान नजर आउण उधर तुर पैंदा। पैरां दे निशान डबल हो जाण, दोहरे हो जाण। तीजे बंदे नूं इउं जापेगा जिवें इथों कोई एक नहीं कई जने लंघे, तीन बंदे चार बंदे लंघणगे पगडंडी बन जाए। जिसने तीन चार दे मगर लंघदियां लंघदियां उस पगडंडी ते लंघदियां लंघदियां सैकड़े बंदे लंघणगे ते राह बन जाए, जिसने हजारा लंघणगे ते शाहरा सड़क बन जाए। धन गुरु नानक ने तुहाडे वास्ते एक शाहराह दा मुढ बने, गुरमुख दे मार्ग दा मुढ बने। उस मार्ग ते गुरु नानक साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके तुरदे ने पए, ते गुरु नानक साहब दे मगर भाई मरदाने दे मगर मगर किते राय बुलार तुरे जांदा नजर आउंदा, किते महाराज शिवनाभ तुरे जांदे नजर आउंदे, किते भाई भगीरथ तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते भाई बूढ़ा जी जांदे नजर आउंदे। इन्हां सारिआं ने मिलके गुरु नानक दे मगर तुर तुर के इस पगडंडी नूं शाहराह दा रूप दित्ता है। साडे वास्ते बड़ी बड़ाई सड़क है, गुरमत गाडी राह है। इस गाडी राह ते तुरन वालिआं ने एक मंजिल ते पहुंचना, जिहड़ा बंदा उस मंजिल ते पहुंचण दी तीव्रता लैके नहीं तुरदा, हौली चाले तुरदा या तुरदा ही नहीं, उस बंदे नूं सोचना चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहिंदे ने

అకాల మూర్త అయోని సంగర్ ప్రసాద్ యప్ ఆప్ సచ్ యుగాత్ సచ్ హెవీ సచ్ నాని కోసీ వీ సచ్ చక్ర కే నిర్వర్ణ జాత్ హర్ పాత్ నిహిన్ జైన్ రూప రంగ రీ ప్రీ ఓకార సత్తహ अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज कह इंद्र इंद्राम शाहो शाहान गणेज फिर भ्रमण में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुनत सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे रूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना दे आवारी नानक दास संत पाछा प्रयु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया

अपने परत करें प्रतपाला अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई। वाहे जी का।

जब लवनी भाग मिलार उठे तब लव भरम पे तिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड थे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और नेड़े कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हजूर कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अज गुरु की संगतों की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाए माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नी गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश ते रख चादर दी हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर पर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल्दी रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाता है अज पंजवें गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दसो गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता तक लो प्यारी चार सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुनो ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावे उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार भी किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है तेरी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

मैनू नहीं, मेरे संबंधी हो। जैसे आप सत्या जोड़े रहे कभी नहीं देना, अजय पाओ खुशी जी साहब जी कह लगे गंगा जी जी पातशाह उसी तो महिला में जाओ साई जी आप ही चलो। अजय कह लगे थोड़ी जी सेवा बाकी रह गई है वो भी करना। तो अनुवर्जन दे पातशाह संगत विचो नंगदे नंगदे नंगदे जथेदार के कोल आके हो गए प्यार किया जथेदार जी गुरु किया संगतान ने जोड़िया वास्ते सेवादार की लड़ है ना दाल तक जथेदारके कम और गुरु के सिखा एक ही वचन की तेन जोड़िया ना सेवादार बिठाए नहीं नहीं तू अगे बड़ी सेवा की राति प्राप्त शादी देख चुका है ठंडा जल पिलाया सारी रात पक्का करता रहे तू तो कोई धर्म अर्जुन देव पातशाह जी का पूर्व सिख है प्यार तेन इतने नहीं बिठाना तेन नाल लैके चलेंगे ते गुरु की अरदास करांगे पातशाह पहली मेरी तेरे दर्शन करने वास्ते आया और कुछ नहीं मंगते जो कुछ सिख नू दिता जो साड़ी चुनी तेरे सबके तो साढ़े गुना बखे जाए कह लगी जथेदार जी मैनू इतने मजबूर किया तो प्यारी सास ने जी सारी संगत ने जोड़े उतार दिते संगत तां हरिमंदर साहब जा रही है ते जोड़िया का राखा कौन बैठा है प्यार ने आखो संगत अंदर पहुंच साहब श्री गुरु साहब जी के दर्शन होए पर पंजे पातशाह के दर्शन बाबे बुढ़े ने पूछा बाबा जी पंजे पातशाह कितने हम दर्शन करिए बाबे ने किया सार संग जी पंजे पातशाह का रात दे पितली साहब गए श्री अमृतसर गुरुद्वारा पितली साहब जी ने सुखी होंगे पुतली घर के कोल गुरुद्वारा स्थान ये इतिहासक जो साखी पुतली साहब पुतली कर के नाल पिपली साहब गुरुद्वारा ने किया बाबा जी पिपली साहब असी रात पिपली साहब रहे सानू तो गुरु के दर्शन नहीं हो क्योंकि संगत पहली दिन दर्शन करवा से गुरु की सौ सुन के दर्शन बाबे बुढ़े ने कहा नहीं राति श्री हरिमंदर साहब बहुत पे आ ग्यारह का टाइम साहब जी ने कहा कि बाबे यार गुरु दियां संगतां दूरों करके आई हर कुछ भी ला के उतारा किया गुरु की संगत भुखी देते मैं कहा कि पातशाह हुक्म करो जाके लंगर छका दें पर पंजे पातशाह मने नहीं कह लगे बाबे यार तू तो रोज गुरु की संगतां की सेवा करना है अज ये रात सानू दे रात दिन इतनी शांत एक दूजे के मुंह वाल वेख लग गए जथेदार ने कहा बाबा जी पंजे पातशाह तो नहीं गए सिख जरूर गया हूं एक प्रचार भी छकाया जल भी पिलाया पठा भी करता रे बाबा बुढ़ा जी कह लगे प्यारे और सिख नहीं सी सिखा का मालिक बाबा जी किस तरह हो सकता है तो बाबे ने कहा पता हूं उसे कितने बड़े निराश एक दूजे के मुंह वाल तके तो उदासी भी जाके कह लगे बाबे आ हूं तो जोड़िया का राखा बिठा गया बाबे बुढ़े दिया कुबारी और कह रही साध संगत पंजे गुरु नानक जी जोड़िया का राखा बिठा बाबा बुढ़ा जी भजे जी मगर संगत भी भजी जाए पहुंच गए इधर मेरे पंजे पातशाह की कर रहे हैं एक जोड़ा चुक लेंगे उन्होंने साफ कर लेते हैं और धूड़ मत्थे दे किसी अगम्भी खेड़े पढ़ते हैं

केवल नाम जपन दे शानु प्राप्त होया है। निरंकार ने 84 लाख जून संसार ते साजना की थी। 84 लाख तो एक काट सी। निरंकार दा मन पसीजिया नहीं ते जदों मनुख दी साजना कीती ता निरंकार प्रसन्न हो गए। अपना रूप वेख्या मनुख दे विच, अपना स्वरूप दिता मनुख नू ते 84 लाख जून दा बादशाह बना दिता। इस ऊपर तेरी शिकदारी अवर जून तेरी पनहारी। ऐ मनुख सारियां जूना होर तेरी पानी भरन वालियां तेरी सेवा करन वालियां होनगियां। पर वेखी मनुख होके मनुखां वाला काम करी। ऐसा ना होवे तेरियां करतूतां पशु वालियां होन, होवे तू मनुख। ऐसा ना होवे निरंकार दे बख्शे होए अमोलक हीरियां लालां तो भी महंगे श्वास, तू कौडियां दे वटे जाया कर दे मैं। ऐसा ना होवे जिस वाहिगुरु ने तैनू अरोग कंचन वर्गा शरीर दिता, तू उसनू सेवा सिमरन परपकार करन दी बजाए विकारां विच पापां विच ला के गाल देवे। हजूर बख्शिश कर दिया न भाई, इस शरीर रूपी धरती दे उते मन नू हाली बना, करनी नू किरसानी बना, नाम दा बीज बो संतोख दा सुहागा रख। जो वाहिगुरु ने दे दिता है सबर संतोख कर, लख लख शुकर कर उसका। जो कुछ वाहिगुरु ने दिता है अरदास कर, हे निरंकार मैं इस योग नहीं, जितना तू दे दिता है जितनिया रहमतां तू कीतियां हन, जे करोड़ जन्म पाके भी तेरा शुकराना करा ता भी नहीं कर सकता। हजूर कहंदे ने इस शुभ कर्मा रूपी खेती विच बीज वो नाम दा ते फिर बड़ी प्रफुल्लत होवेगी। ऐ मनुख फिर निम्रता दी वाड़ रखी, किते भले कर्म करदिया होया तेरे मन विच हंकार ना आ जा। जिस खेती नू वाड़ ना होवे उस खेती नू पशु जानवर उजाड़ जांदे हन, किते तेरी भी शुभ कर्मा रूपी खेती उजड़ ना जावे। इसलिए निम्रता विच रही, सब कुछ करदिया होया भी निरंकार अगे अपने गुना बख्शावे। अमृत वेले दे जागण दी दात मंगी, नाम दी दात मंगी गुरु कोलो, हर वेले ओदे निर्मल भाव विच रवी। क्योंकि यही एक रुत है, यही एक जून है जिदे विच तू